0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

बहुत ही सरस राम। चलो जी अभी शॉर्ट करते हैं लतीफे हंसी मजाक और आप लोगों के साथ गपशपे। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ ही रहना है और हमारे साथ ही पार्टिसिपेट करना है और हमारे साथ आना है। आप लोगों ने भी लतीफे करने हैं और इस प्रोडक्ट के हवाले से आप लोगों ने भी मुझे

0: मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम
2: गुलूनी हो रिश्ता पुंदे हो माह के डेरी ज्याते हारा बेवेनु दुम रजर सिंगर टिक्शुले यह हो रेन हो रे माह हो माह के डेरो कपनो क्री क्री में इस्तेमाल करल हो माते ही सो रिजल्ट ओ फायदा न कड़ारा और चिकला माह उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्री क्रीम रावल नो माते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रजा गुलूनी हो
3: अस्सलाम वालेकुम अर्थकला चेर रावनी न कोडेर वक्ती नवरांग सर्वतलाई
4: وعلیکم السلام انجینئر مسعود صاحب یار خلی خوند میں خراب تھا سر میں بوجھ دا اڈوکی میں خوشی جی وہ مائدہ میں ڈیر زیاد درد کبھی وہ ذرا وانیا کچیرے نورنگ چی میں روغ ونڈے ڈاکٹر بندے چیک اپ کو
3: او سدا سڑیا ماڑا تا دیتا کھا پائے ارسا چی ویس ویس

0: श्री जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर ता और ताज़ा तोता इश्मा हर्बल ऑयल वो खुलो
1: इश्मा हर्बल ऑयल आगा इकराम भाई चे पर रेडियो चे प्रोग्राम ना कवि आगा ऑयल तशवे
0: बिल्कुल अर्तगला दे तो टोले भी मोरे हाल इश्मा हर्बल ऑयल से मौजूद दे
1: ओ कुर्बान शी एमएसडी दा खुद दे टोले परेशानी अर्ता हाल कर दे रजा चे नन नन इश्मा हर्बल ऑयल वाखलो खोग्राना एमएसडी दा हर तो वया कि द इश्मा हर्बल ऑयल खाली महदे दे पर कार कई कनोरो बीमारियां दे पर हम उस दा इस्तेमाल वाला इतु
0: ना मारा महदे ने अलावा इश्मा हर्बल ऑयल सर दर्द कब्ज बाद अजमी और बहुत सारे वने खतरनों की बीमारी दे पर आप देर बेहतरीन ऑयल दे
1: डेरा डेरा मेरा बनी इंजीनियर मसूद साहब को पर आखिर से दर्द हुआ कि द इश्मा हर्बल ऑयल बा मुस्ता चिर त मिलाओ कीजी
0: हर तगला दावत उस्ताद की पीके हार वड़ो वो देघाट बाजार से पर मुनासिब रेट सर मिलावी जी इश्मा हर्बल ऑयल के बारे में مزید معلومات के लिए कंपनी के साथ इस नंबर पर رابطہ करें 0342311292

कॉल भी बिल्कुल से मिली जी, स्टार्ट के बिल्कुल कॉल से मिली जी, और दिन अलावा मैसेजेस हम बिल्कुल अर्थ कवर छे पदे प्रोग्राम से छे, मतलब तो चेरते चेरते का वो जो रहे कमा रेडियो बाने, मतलब तो से अवो जोर वही दा बिल्कुल जरूरत वेली छे पदे दवर नंबर बाने प्रोग्राम से कॉल कवली छे और व्हाट्सएप से मैसेज हम कवली छे। बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक्स हमरा प्रोडक्ट दी हर कॉस्मेटिक स्टोर के तो सब आसानी से मिलेगी जी। नो बिल्कुल चाहता कि हाँ न मिले जी, बिल्कुल कंपनी हेल्पलाइन नंबर जी कमदाय पे बने कॉल जरूर कवल छे और मालूम बिल्कुल खुशाई छे जहाँ प्रोडक्ट इन इश्मा कॉस्मेटिक्स को प्रोडक्ट दी पदे जी के चाहता कि मिले जी। हो बिल्कुल दासी बा कॉस्मेटिक स्टोर ने भी चाल तक इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ने भी नोहार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तो कॉस्मेटिक स्टोर के तो सा इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कम दिस पासा नहीं सर मिले जी। और दिन वाला बिल्कुल सब होगा से गर्मी हटे रसियो तो डे बाई डे चुकम दे गर्मी से सफा कीजिए। नो तो से बिल्कुल दस गवे छे पदे गर्मी के इश्मा सन ब्लैक चुकम दाए अगे इस्तेमाल जरूर कवे जैसे कि जी सड़ाई जी बाहर तक गर्जी गर्मी तक गर्जी नो फेस चुकम दे आगा मतलब खराबी जी नो चिकल हाँ तो से इश्मा सन ब्लैक वो लगे नो बिल्कुल इश्मा सन ब्लैक चिकम दाए आगा तो से बिल्कुल मख हिफाजत कवलेशी

0: जी बिल्कुल कॉल तरफ हर जी प्रोग्राम से बिल्कुल कॉल से मिले भी ठीक शॉप और दिन नंबर बने प्रोग्राम से कॉल को वाली शेप 0331 52 65 340 या दिन अलवा 0345 933 2580 मैसेज देश मिले भी खुआगे नमक कॉल तरफ डरेगर सी प्रोग्राम से कॉल से मिले भी खसी जी बकाल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को दी किम जैना दे इश्मा गजमेंट पाकिस्तान प्रोग्राम के अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर के दिखम जैना गुलोनी खबर है कभी करकना गुलोनी का प्रोग्राम से हर कले इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के खैर डेरा मन खजीदार तो हुई है ना से द रेडियो तो लगे बोली द रेडियो वो लग स्लो का हेलो अच्छा मोबाइल आवाज से वो चटकड़े हो बोझ बिल्कुल गुजरा है ओकर लगे हैंड फ्री दे लगे बोली भी जी सही सही जी गुलोनी सरंगे नूर पखपल बांधे शे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ईद खुतेर शकन ईद खुद शोक हो अच्छा जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बदागत बिल्कुल प्रोग्रामों की शुरू तो सब बिल्कुल प्रोग्राम की भी मुख्तलिफ टाइम्स वांदे इश्मा कश्मीर पाकिस्तान प्रोग्राम की हाँ दिन लबा हाँ इस प्रोग्राम दे की तो सब बिल्कुल रदीमी तो खिदमत की हाजिरी जी काल ना लगे दल बिल्कुल दा खबर हो सही दो खबर दा दे इश्मा कश्मीर पाकिस्तान प्रोग्राम की कॉल वो लगे दम सही सही दारा तो वही छे तो से खूब अखबार बाने माशाल्लाह कल हाँ प्रोग्राम की कॉलो कई प्रोडक्ट तो से इस्तेमाल कर डेज यद प्रोडक्ट हम सब पैगाम ओवर के हुए इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोडक्ट पे वाले सरा जे तो से नन सुबह हो का मुखबर हो कला छे इश्मा सन ब्लैक चिकम दागा इस्तेमाल वाले छे जगह से गर्मी भी नो पदे के बेहतरीन चुकम दे लका रिजल्ट पे के दिन लवा स्किन ते चुकम दे फायदा वर की स्पेशली मक्स चुकम दे जगह से बाहर तसड़े गर्मी के गर्जी नो मतलब जे कला इश्मा सन ब्लैक इस्तेमाल भी नो बिया ददे मतलब हिफाजत कवि
1: जी
0: सही सही बिल्कुल सही खबर दो डेरा मनना गुलोनी दे कॉल कवले आलो या खजर से प्रोग्राम से दे कॉल होगा ठीक छो वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना कॉल कवले यो जहान मनना बिल्कुल दवा गुलोनी करकना डेरा मनना प्रोग्राम से कॉल कबले बिल्कुल कॉल से मिली जी पर 0331 52 65 340 नंबर बाने किसी जब कॉल बाने सो को द कम जैना दी खजी बिल्कुल तो से कॉल से कुम देखा ड्रॉप शो किसी जब कॉल बाने नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को द कम जैना दी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सुख खबर की किम देना
2: जी अदनान खबर खाओ बाजार अहमद खान ना
0: अदनान खबर की बाजार अहमद खान ना
2: जी
0: द बाजार अहमद खान पे कम कम इलाका के दे
2: दा दले दे बानी से तरफ मेरे जी दा बानी नो याडा से दूर दगे ना रोड रोगरा दा दा दी बानी नो याडा से दूर करा लांगा
0: अच्छा बानी पत्थर बने दा सदा हमें पौली दर बने वरवे दो हो बस या हां दा दे शौक से दा इलाका देर तो शो वाला सीधा मतलब बानी कर दरी मी मतलब इलाका जी कम देखम इलाका उस वाला देखिये मतलब द मक्षिनाए चुकुम सदी आगा दल्त की पोती दी
2: हर से प्रोसेडी दे अंग्रेजों ने चिकी में गाड़ दी आगे पुस्ता दी किम बेजी दी गार गा आए प्रोसेडी
0: सही सही सही बिल्कुल सही इंशाल्लाह चकार बिल्कुल लगे भी बनी गोल खो बनी गोल दे बनी गोल तो चकार लगे भी जरूर ठीक छो जी दे दर तो वह प्रोग्राम और वही इसमें कॉस्मेटिक कम प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करी दी सही ऐशमा हर बलाय अच्छा जी मतलब मैदे दे पर इस्तेमाल कर लूं
2: बिल्कुल मैदे दे पर मैं इस्तेमाल करी हुई
0: सही सही सही स्वाद डेरा मन ने कॉल के बोले
2: ओके जी डेरा शुक्रिया
0: यो जहान मन ना बिल्कुल बनी गोल ना कॉल कर रहे हो डेरा मन ना कॉल के बोले پروگرام دی بالکل ریشما کاسمیٹک پاکستان ماتو ویلی شی سو بجے پر تاریخ کم پروڈکٹ اوس استعمال کری دی بالکل پروگرام کرتا ویلی شی اگے دے بڑا ڈائل کول شی 0331-5265-340 یادین علاوہ 0345-933-2580

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

गोले, मिल मन्नत दिची अदू नशी पस्तार गो के मात शी बरसा तू ना बरानु नशी पस्तार गो के रुंशम पपेराग दगुल अंदाम कितिन दकु न हुरम रुंशम पपेराग दगुल अंदाम कितिन दकु न हुरम रक्ति शी गुलुना ची गुलुना शी पस्तार गो के स्तादा नजुना आदा गाने मकिजुना पो स्ता दगा नजुना आदा गाने मकिजुना बा माता जोड़ द हिजर तस्वीरु नशी पस्तर गो के शपये पसर वाखली तर सहरा लिबने गर्जी शपये पसर वाखली तर सहरा लिबने गर्जी गुली शौगिरी में चिहुबु नशी पस्तर गो के شپئے پسر واخلی شپئے پسر واخلی تر سہرا لبنے گرزی گل شوگیری میں چخبو نشی پستر گو کے

ओके जी, शिफा का आसपास इस पाकिस्तान प्रोग्राम सारा तौर से जी बिल्कुल तुझे कम नहीं हेल्पलाइन नंबर भी निकाल के बोले अच्छा सवाल खबर है या प्रोडक्ट हवाले सर से मालूम हासिल अवल कोड़े जी 0331-397-3636 दी सर आर जो शहीद खान था प्रोग्राम नवर की इजाजत और सबूत सर अब यहाँ मुलाकात कीजिए तरह के वक्त पूरे दलोई अल्लाह पामा।

पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दरम्यानचा अवलीनय वनडे मॅच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लुबेगे. द पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान शहीन शाह आफ्रीदी द टास प्रमुख आबंदी ओवेल चिन्नन व्रजबा यदगार जुड़ऊ मुंग बदा कोशिश हुई चे ऑस्ट्रेलिया टीम पर कम न कम स्कोर बांधे आउट को वजह दीवी चे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दरम्यानचा तरवोसा योसल इवलस मिचुना लुबेदली पदे के ऑस्ट्रेलिया ता यो अव्या मिचुना गटलोसरा वजह बरतरी असिलदा. पाकिस्तान सिर्फ शपक देश मिचुना गटली और द्रे मिचुना द बगैर नतीजे खत्म शवी दी. याद दीवी चे पाकिस्तान टॉस गटलो नपस द फील्डिंग फैसला करे दे वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दरम्यानचा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के द अवलीनय वनडे में जरी दे. अवो शरीकऊ द मौसम हाल. मौसमियातो मुहकमे तरमखा तेरो सलीरेज घंटो के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाब शासिमो के पासमान वरेजे औजने इलाको के बरान शवेदे. मौसमियातो मुहकमे तरमखा तेरो सलीरेज घंटो के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाब शासिमो के ज्यात न ज्यात दर्जे हरारत शपक दिर्श और कम न कम दरिश दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवे. पहावा के दनमय तनसुब द्वादिर्श फीसद और दे आवा रफ्तार लस किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड करे शवेदे. बल अड़खता सबाबन मर सबा सहर अतमी नट दपासा पिंजा बजे सेरवही और माखम अतलस मिनट दपासा ओवा बजे बा डूबेगी. दाऊ द रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क मुहिम खबरुना नोरा मुहिमो खबरुना अवरिदलो दपारा रेडियो अमन 88.4 करक टांग और बटाग्राम फेसबुक पेज लाइक के उस माता द न्यूज टीम सरा राकई जजत दल्लोई अल्लाह पामान पा.

ढहर झणा आवाज रेडियामान आवाज रेडियामान 88.4 नेटवर्क नंगरवळूस तासुलपारा दगशान मलमती परब्रह्मन चेतस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडियामान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज युवान रंग अमन अमन।

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचर ततासो पद से मरस के मुब्तिला ये किपा आगे के बवासीर फेस्टुला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर और कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे छिपनोरो जायुनों के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेलेदी नुतासोराशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था जे अल तक की डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई और देना इलावा बे औलादी मर्दाना कमजोरी जनाना पोशीदा अमराज मैदे अल्सर और द मैदे जुमला अमराज और द शुगर मुकम्मल इलाज ब्लड प्रेशर और दजड़ जुमला अमराज शामिल दी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहेब पजदीद क्वांडम मैग्नेट एनालाइजर मशीन पजरिया बांधे द टोल बदन मैना कई और द दे सरा बतास्ता फेजोथेरापी द मशीन पजरिया बिल्कुल दरमान होम्योपैथिक सेंटर नखपल इलाज जर तर जरा दरला सके। पतेदा दरमान होम्योपैथिक सेंटर नेज खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर ता बिल्कुल मखामा। मोबाइल नंबर ए दे 0331 12 12 413।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: गुलोनी होरिस्ता पुंदे हमाह के डेरी ज्याते हारा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्शुले यह हो रहे हो रे माँ हमाह के डेरो कपनो क्री क्री में इस्तेमाल करल हुमा ते ही सु रिजल्ट और फायदा न कड़ारा और चिकला माँ उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्री क्रीम रावल नु माते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी हो रे जिसे हम जान द पारा रावड़म इश्म क्री क्रीम कता से हम वालो चिमुंग पुंद सफा सुथरा और हिस्तेशी नयो जल जरूर इस्तेमाल कई इश्मा क्रैक क्रीम।
2: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اشما ایک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ او کھایا
3: होरे दुकान पता इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल मिला।

जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा।

0: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 सड़क हर वक्त आपके साथ।
1: ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों, ओजड़ियों और दीगर बाकायात गैर मुतय्यन शुदा जगहों पर हरगिज न फेंकें। ये अमल बदबू, तअफ्फुन और वबाई अमराज का सबब बनता है। मजीद बना खुली जगहों पर फेंकी गई आलाइशें गिधों, कौवों और दीगर परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, जो सिविल एविएशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और फिजाई ऑपरेशन के लिए संगीन खदशात पैदा करती हैं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर की जानिब से फराम करदा बैग्स में आलाइशें बंद करके अपने घर के सामने रख दें, ताकि मुतलका सफाई का अमला उन्हें बरवक्त उठाकर मुकर्रर जगहों पर मुंतकिल कर सके। बराए करम सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं, माहौल को आलूदगी से महफूज रखें और अपने शहर को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का साथ दें।
2: दहर जुड़ा आवाज रेडियो मन आवाज रेडियो मन 88.4 नेटवर्क मुंगरूस तासुल पारा दगशान मनमती पर रमना चीतस तासु होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंगस तासु सरयो रेडियो मन 88.4 करक आवाज दस्तासु आवाज जुआन रंग अमन अमन।
3: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।

अच्छा जी बिल्कुल, हमारे तरह की जो प्रोग्राम से काल प्रोग्राम की शुमिल भी फॉर 09272921292 यानी वो 09272921292। अच्छा जी बिल्कुल, यो मैसेज हर वाला है और यही कहना चाहिए तारिक भाई। अच्छा जी सही। सलाम तारिक भाई, आज आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं, आपका गला खराब हो जाएगा। तारिक भाई मैं सब प्रोग्राम सुनती हूँ लेकिन कॉल और मैसेज का मौका नहीं होती। हलीमा फातिमा वजीरस्तानी को स्पेशल सलाम, बाकी सब लेसर को सलाम। मैं फातिमा रदान शिमाली वजीरस्तान से। दाहा बरदे बिल्कुल ठीक तो

हाँ जी बिल्कुल मुक्त मैसेज करे दे रोशिहान मैसेज करे दे तारिक भाई वेलकम टांग के सब सिस्टर को गुजरे ईद मुबारक हो एंड जोया महसूद को स्पेशल सलाम एंड गुजरे हुए ईद की मुबारकबाद एंड माई ऑल करेक्ट का करेक्ट फुल लिसनर ता वेलकम अच्छा जी डेरो वंदना थैंक यू डेरो मनना रोशिहान मैसेज को ले

हाँ जी बिल्कुल इजाजत देना होगा इंशाल्लाह। सबोता मॉर्निंग की वेदर से मुलाकात कीजिए द 8:30-9 पर प्रोग्राम के प्रोग्राम से कम औरतों के प्रोग्राम दे पाएगी वही इंशाल्लाह से कीजिए मुलाकात टोलो डेर ज्यादा बनाना चाह प्रोग्राम से कॉलो को चाह प्रोग्राम से मैसेजों को दागे टोलो डेरा ज्यादा मनाना कभी देर लो चाह प्रोग्राम हमेशा सर बोर दो या चाकाल नौ लगे दो आगे हम डेर अजियो तो मरना कभी कल अगला प्रोग्राम फॉर्मेट हाँ चुकम दे जिंदा से चेंज भी करना ब्या सही भी ठीक शो नो बाकी बिल्कुल तबियत तो माशाल्लाह ठीक थे हो बस नंदा से स्लो टाइम तो पकड़ वाला प्रोग्राम के सही ना डेरा मनना द टोलू बिल्कुल है जिस भाई स्लो दिनों खोलो नो बिल्कुल लाखेर की दाहुबरा चखपले मशरूनो कशरूनो ख्याल के वही इज्जत के वही स्पेशली मशरून चुकम दी अगर इस युद्ध का ख्याल सोता है और मशरून चुकम दी कहना दर्दीर की मती दी शाम चाहता हो तो दे पता नहीं लगी जी और मशरून चुकम दी मशरून ही सही ना नौपले मशरून इस युद्ध ख्याल सोता है और दिन लोग मशरून तलश की टाइम वर्क हुए मशरून सर बिल्कुल लश्क नहीं वजह दादा कहना चाहिए मशरून गोरा अगे मैंने 150 बानी तिरछी हुई कहना और नन सब चुकम दा यंग तबका दा दी तो खो पता न लगी जी नौ मशरून चुकम दी कहना अगे ना 150 जगी जी नगे सरा खामा हक नहीं टाइम वर्क हुए हो नन सब खबरों के दे मोबाइल चुकम दे बिल्कुल हर सड़ाई जोन तक दे बस मोबाइल व्यूअर सरा जोन तो बिल्कुल नो सी मोबाइल की बात या फेसबुक इसी मालवी या व्हाट्सएप इसी मालवी चाहे सब चैटिंग की भी बिल्कुल का खबरों को मख के बिल्कुल खबरों को बिटकुन की बात देर किसान चुकम दे पपला के जम अभी मशहूरों पपे की मौजूद वो कशरान में मौजूद वो नो बिल्कुल बस दा मुख्तलिफ शुकुम खबर वेदा बकेदले जड़े खबर बकेदले पदे के या दिन लवा दासे मशर पहुंचे बदासे युवा खोजा शांति खबर बके रोख सला शुरू बा एकड़ा नठोर बिल्कुल गोर दासे शे तरीके से वर्तनी वाला वा खबर आए बा गौर बांधे वरे दला नो मख के गुरा इतिफाक को हलको के इतिफाक को नो आ इतिफाक नन सबा खत्म शोई दे और बिल्कुल वरे पर वरे दा इतिफाक खत्मी जी नो बिल्कुल मोबाइल चुकम दे गना दे हर सड़ाई जोन तक कटाई दे फायदे शायद है हो कचर तक सड़ाई उगड़ी जिस दिन अजब फायदा उचित तक बिल्कुल फायदा होना उचित बोले छे और कचर तक उगड़ी छे ना नो बिल्कुल नुकसान आती हम डेर सा हाँ जी बिल्कुल टाइम दे खत्म शिवे इनशाला सबोत युजुलबिया दर्शन की मुलाकात टोलो डेर जिया तो मरे ना युजुलबिया रेडियो मन में बिल्कुल कोशिश दावी छे 10 प्रोग्राम तो से पर ओकी सिपाही के तो से फायदे खबर भी नो बिल्कुल मुलाकात भी जुल ब्यासा बहुत अच्छा रखी तरह पर मंगत वगान की याद साथ है और बाहर के दागा संदरा हाँ तो से बोर वही मदे सॉन्ग सर बेगोड़ दरसा इजाजत दो लोई लापमा